103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

मणिकांचन और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी है भक्ति रचना। आइए अगली भक्ति रचना सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में।

विनोद अग्रवाल और साथियों की गई इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

0: तुलना में निरंतर गिरते स्त्री अनुपात के चलते इन दिनों देश में बेटी बचाओ अभियान की आवश्यकता आन पड़ी है। नारी अपमान, अत्याचार और शोषण के अनेक निंदनीय कृत्यों से समाज ग्रस्त है। सबसे दुखद कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित अमानवीयता, अनैतिकता और क्रूरता की वर्तमान स्थिति हमें आत्ममंथन और चिंतन के लिए विवश कर रही है। एक ओर नारी स्वातंत्र की लहर चल रही है तो दूसरी ओर स्त्री के प्रति निरंतर बढ़ते अपराध दुखद हैं। साहित्य की एक सर्वथा नई धारा के रूप में स्त्री विमर्श पर चर्चा और रचनाएं हो रही हैं। नारी के अधिकार, नारी वस्तु नहीं व्यक्ति है, वो केवल भोग्या नहीं समाज में बराबरी की भागीदार है, जैसे वैचारिक मुद्दों पर लेखन और सृजन हो रहा है। पर फिर भी नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में वांछित सकारात्मक बदलाव का अभाव है। हमारे देश की पहचान एक धर्म प्रधान, अहिंसा और आध्यात्मिकता के प्रेमी और नारी गौरव गरिमा का देश होने की है, फिर क्या कारण है कि इस शिक्षित युग में भी बेटियों की यह स्थिति हुई है कि उन्हें बचाने के लिए सरकारी अभियान की जरूरत महसूस की जा रही है। एक ओर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी बेटियां अंतरिक्ष में भी हमारा नाम रोशन कर रही हैं, महिलाएं राजनीति के सर्वोच्च पदों पर हैं, पर्वतारोहण, खेल, कला, संस्कृति, व्यापार, जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों ने सफलता की कहानियां गढ़कर सिद्ध कर दिखाया है कि का नहीं अबला करी सके, का नहीं समुद्र समाये। तो दूसरी ओर माता पिता उन्हें जन्म से पहले ही मार देना चाहते हैं। ये विरोधाभासी स्थिति मौलिक मानवाधिकारों का हनन और समाज की मानसिक विकृति का सूचक है। बेटियों के निर्मम हत्या की कुप्रथा को जन्म देने में अल्ट्रासाउंड से कन्या भ्रूण की पहचान की वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग जिम्मेदार है। केवल सरकारी कानूनों से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के स्थायी प्रयास संभव नहीं है। दरअसल इस समस्या का हल कानून या प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं अधिक स्वयं मनुष्य के अंतःकरण, उसकी आत्मा, प्रकृति या मनोवृत्ति, मानवीय स्वभाव, उसकी चेतना, मान्यताओं और धारणाओं और उसकी सोच में बदलाव तथा नारी सशक्तिकरण ही इस समस्या का स्थायी हल है। समाज की मानसिकता और मनोप्रकृति में ये स्थायी बदलाव आध्यात्मिक चिंतन तथा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास और पारलौकिक जीवन में आज के अच्छे या बुरे कर्मों का तदनुसार फल मिलने के कथित धार्मिक सिद्धांतों की मान्यता पर दृढ़ता से संभव है। विज्ञान धार्मिक आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, किंतु सच ये है कि आध्यात्म विज्ञान का ही विस्तारित स्वरूप है। विभिन्न धर्मों के आडंबर रहित धार्मिक विधि विधान वे सैद्धांतिक सूत्र हैं जो हमें ध्येय लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये उद्घोष हिंदू समाज से कन्या भ्रूण हत्या ही नहीं, नारी के प्रति समस्त अपराधों को समूल समाप्त करने की क्षमता रखता है। जरूरत है कि इस उद्घोष में व्यापक आस्था पैदा हो। नव दुर्गा उत्सवों पर कन्या पूजन, हवन हेतु अग्नि प्रदान करने वाली कन्या का पूजन हमारी संस्कृति में कन्या के महत्व को रेखांकित करता है। आज पुनः इस भावना को बलवती बनाने की आवश्यकता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कन्या हत्या रोकने के लिए भाषण देने, आंदोलन चलाने और कानून, अदालत या जेल का प्रकरण बनाने के बजाय केवल इतना कहा है कि जिस व्यक्ति के बेटियां हों वो उन्हें जिंदा गाड़कर उनकी हत्या न कर दे, उन्हें सप्रेम और स्नेह पूर्वक पाले पोसे, उन्हें नेकी, शालीनता, सदाचरण और ईश परायणता की उत्तम शिक्षा दीक्षा दे, बेटों को उनसे बढ़कर न माने, नेक रिश्ता ढूंढकर बेटियों का घर बसा दे तो वो स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। मुस्लिम समाज कुरान शरीफ की इस प्रलोभन भरी शिक्षा को अपना कर बेटी की अच्छी परवरिश से स्वर्ग प्राप्ति का अवसर मानकर प्रसन्न हो सकता है और लालच में ही सही पर लड़कियों के प्रति अपराध रुक सकते हैं। जरूरत है इस विश्वास में भरपूर आस्था की। कुरान में कहा गया है कि परलोक में हिसाब किताब वाले दिन जिंदा गाड़ी गई बच्ची से ईश्वर पूछेगा कि वो किस जुर्म में कत्ल की गई थी। इस तरह कन्या वध करने वालों को अल्लाह ने चेतावनी भी दी है। ईसाई समाज में भी पत्नी को बेटर हाफ का दर्जा तथा लेडीज फर्स्ट की संकल्पना नारी के प्रति सम्मान की सूचक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान, स्वर है ए हरिहरन और साथियों का।

लंका की अटारियों में आग लगा, सीता जी का चिन्ह चूड़ा मणि लेकर पवन सुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्री राम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह सुनाया।

ए हरिहरन और साथियों के सुर में अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। कलाकार हैं नरेंद्र सिंह तोमर और साथी।

नरेंद्र सिंह तोमर और साथियों के गाइस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंजनी अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 7 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

0: कूल्हे।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताय और केंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आइए आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें। 7:10 पर यानी थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से। यादों के झरोके से क्लासिक फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 7:20 पर। 7:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे समाचार प्रभात। प्रातः 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। नौ बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 10 बजे। आपकी पाती आपके गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम पेश करेंगे 10:05 पर। 10:30 पर सखियां सुन सकेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में आज की बात में आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, साथ ही सखियों की पसंद और व्यंजन विधि में जानेंगे पौष्टिक वेजिटेबल पराठा और दही डिप के बारे में। 11 बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार होंगे दोपहर 2:10 पर आकाशवाणी भोपाल से और हिंदी में समाचार 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

2:30 से पुनः आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का। शाम 5:30 बजे यानी 5:30 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात में आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, इस विषय पर चर्चा। विज्ञान जगत में जानेंगे सैटेलाइट तकनीक से बदलती दुनिया, इनसे मिलिए में आज मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी शिवानी उइके से, उनके अनुभव और उपलब्धि पर बातचीत होगी और साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम विवरण सुनिएगा 6:00 बजे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली, स्वर होगा सोनू निगम का। फिल्म संगीत सुनिएगा 6:30 पर 6:50 पर रोज की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से। 7:20 पर किसान भाई सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज की बात में आज आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा, साथ ही सामयिक कृषि चर्चा होगी, खेत में मेड़ बंधान कर फसल सुरक्षित करें इस विषय पर। साथ ही सुनिएगा लोकगीत बाजार भाव, जानिए मौसम का हाल। आपके संदेश आपके गीत ये कार्यक्रम पेश करेंगे रात 8:00 बजे 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम साज और आवाज। समाचार संध्या 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से और 9:00 बजे आप सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपके मीत ये गीत ये कार्यक्रम पेश करेंगे रात 10:00 बजे 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का गायन राग हमीर। 11:00 बजे होंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे 11:05 पर। 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण इस विषय पर। और आज सभा का समापन होगा 11:45 पर। ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग के सचिव निशांत परमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरवड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिंग बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के दो तिहाई कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकलसेल दिवस के तारतम्य में सिकलसेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.2 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं उजाला फिल्म के गीत से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन और फिल्म है आरजू।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये गीत फिल्म सागर से। रचना थी जावेद अख्तर की, संगीत था राहुल देव बर्मन का। अगला गीत लिया है फिल्म अपराध से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
2: सुबह सवेरे
1: सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं आइए पहले सुनते हैं सूचना। जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल ग्रामीण के द्वारा 5 जून यानी आज विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में आज सुबह 10 बजे से शिविर आयोजित किया जाएगा। अगली सूचना। वन विभाग बैतूल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 5 जून यानी आज प्रातः 9 बजे से बैतूल वन मंडल के अंतर्गत नगर वाटिका वन विद्यालय कालापाठा बैतूल में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रोताओं एक अन्य सूचना। आकाशवाणी बैतूल द्वारा रेडियो के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी@90 युवा आउटरीच इनिशिएटिव के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक एवं बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 5 जून यानी आज श्री बालाजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान बैतूल में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विभिन्न समसामयिक एवं सामाजिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आकाशवाणी बैतूल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी बैतूल के कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रवीण चौरे ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को मंच प्रदान करना है तथा उनकी प्रतिभा को निखारना है। कार्यक्रम प्रमुख श्री सचिन भागवत ने सभी विद्यार्थियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
1: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
0: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाए विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: हमारे संपर्क क्रमांक है 07141234722 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: और अब आइए सुनते हैं ये देश गान।

ಕಿಡಿದ್ರೆ ಕಡದ ಕಡದ ನದಿ ಮೀತಾಕ ಜನ್ನು ತಾಕ ಮೀತಾಕ ಜನ್ನು ತಾಕ.

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

0: श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक

0: 3.88 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत

0: तो वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगिहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।

0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
1: जी।
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
1: जी।
0: है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी।
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करेंगे।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
4: बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज,
5: महाराज
7: की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
7: महाराज की
5: जय हो,
7: महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मुझे भी ऐसा हो सकता है।
4: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली?
6: तुम
4: क्या
6: कैसे हो सकता है?

0: ना तो सकता
1: नकली कैसे आ गया?
2: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवा
1: ने बोला कि नकली है।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
2: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
2: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
2: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा। महाराज

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं, चल चलू मैं, जल्दी सीख भी जा।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल

चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। नौ बजने को है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से बस कुछ ही पलों में।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से, दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और उन मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य की बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत, प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओ, अंतराल की बात कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओ, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगी। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से। श्रेया घोषाल, सोना मोहपात्रा की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यही संपन्न होता है। डीजे आ गया मुझे यानी पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर उठा।

माँ को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

उसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को

बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम

ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीर दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती।

2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलोक हीरा लहरी वाचन स्वर दीपा सिंह।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ांचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रूपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत NH 347 पीके हिवार खेड़ी रोशनी आशापुर मेधी मार्ग को 2 लेन और देशगांव जुलवानवी मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम अवली में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रेम कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट समकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जांच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सीएस 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेकर की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की

0: राजगुभी प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। मिश्र विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुरुष लोग अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा जलोद्यान और नमी वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के पिछले काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्य खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: आकाशवाणी का ये बैतुल केंद्र है। जब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रतिमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं खेल फिल्म के गीत से। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहा है सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही, कमल, बालूजा, मधु, सागर और इनके परिवार के सदस्यों ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वास्तव से। आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की है, समीर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है। इस गाने को पसंद किया है बडोरा से अनीता भिकुंडे, मनोज भिकुंडे, पुनीत और इनके परिवार के सदस्यों ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसेट क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और इनके बहुत से साथियों ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म क्रिश का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत है, आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म बाबू से, आवाज है लता मंगेशकर की। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन। और इस गाने को पसंद किया है गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके बहुत से साथियों ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज शामिल कर रहे हैं, जो आया है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। मैसेज भेजने वाले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमधा, सुखरीकला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि और इनके बहुत से साथी। आप सभी ने पसंद किया है दीवानगी फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। सलीम बिजनौरी का लिखा गीत है, इस्माइल दरबार का संगीत। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके गीत, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए अब पेश है सखियों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत चैताली गौर के साथ। तो स्वीकार करें मेरा स्नेहिल अभिवादन। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे यकीन है कि आप में से कोई रसोई में होगा तो कोई रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होगा तो कोई गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ हमें सुन रहा होगा। पता है सखियों, आज मैं घर से बाहर निकल रही थी तो दो दोस्तों की बातचीत ने मेरा ध्यान खींच लिया। एक कह रहा था, यार परेशानियां तो बहुत हैं जीवन में। दूसरा हंसकर बोला, लेकिन खुश रहने के बहाने भी तो कम नहीं हैं। बस यही बात मेरे दिल में उतर गई तो सोचा क्यों ना ये बात आपसे साझा करूं। और हम और आप इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत इसी मुस्कान से करें। तो चलिए सखियों, प्रकृति और नारी दोनों में एक अद्भुत समानता है। दोनों ही सृजन का आधार है। एक जीवन देती है तो दूसरी उस जीवन को संभालने के लिए शुद्ध हवा, जल और हरियाली देती है। हम महिलाएं सदियों से ही प्रकृति के बेहद नजदीक रही हैं। कभी मां बनकर बच्चों को पानी बचाना सिखाती हैं, तो कभी घर की जिम्मेदारियों के बीच छोटी छोटी आदतों से पर्यावरण की रक्षा करती हैं। सखियों, कपड़े का थैला इस्तेमाल करना, रसोई में भोजन की बर्बादी रोकना, तो कभी पेड़ पौधों की देखभाल करना, ये कदम भले ही सामान्य लगे लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हम देखें तो धरती की हर सांस में नारी का ही अंश है। दोनों ही जीवन रचती हैं। बात पर्यावरण संरक्षण की हो तो दिमाग में चिपको आंदोलन जरूर आता है। बहनों, पहाड़ों में पेड़ों के कटने का खतरा मंडरा रहा था, तब वहां की महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर उन्हें बचाने का साहस दिखाया, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि जंगल नहीं होंगे तो नदियां सूख जाएंगी, हवाएं दूषित हो जाएंगी और हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। तो उन महिलाओं ने सिर्फ पेड़ नहीं बचाए बल्कि आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित किया। बहनों, हम महिलाएं

रसोई के चूल्हे की आंच भी संभालती हैं तो जंगल की हरियाली भी, घर भी सजाती हैं तो धरती की खुशहाली भी। वर्तमान में जब प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं, हवाओं में जहर घुल रहा है, तो ऐसे नाजुक समय में हम सखियों की भूमिका तो और भी अहम हो जाती है। तो क्यों ना आज अपने आप से वादा करें कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण एक स्वस्थ और सुंदर भविष्य की नींव है। तो ये तो थी आज की बात, जिसमें हमने चर्चा की पर्यावरण सुरक्षा और महिलाओं की भूमिका पर। अब लेते हैं कार्यक्रम में छोटा सा अंतराल।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: चलिए अब कार्यक्रम को लिए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। भाई हमें पता है शुक्रवार के दिन आप सभी श्रोताओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है श्रृंखला सखियों की पसंद का। तो फिर देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं। प्यार की सबसे खूबसूरत बात होती है सखियों कि ये किसी शर्त या बंधन का मोहताज नहीं होता, बस दिल से निकलता है और किसी बेहद खास के दिल तक पहुंच जाता है। कभी किसी का नाम लेते ही जोर जोर से धड़कने लगता है और कभी खूबसूरत से सपनों में खो जाता है। तो लीजिए सुनते हैं इन्हीं भावों को समेटे ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनना चाहा है लिंक रोड बैतूल से दीक्षा सिंह, राहुल सिंह, राजबीर और अनाया ने।

प्रेम की दुनिया बड़ी अनोखी होती है दोस्तों। यहाँ मुलाकातें केवल सामने बैठकर ही नहीं होती, कभी यादों में तो कभी ख्वाबों में, और कभी सिर्फ एक मुस्कान में भी हो जाती है। जब कोई दिल के बेहद करीब होता है ना, तो मानो उसकी मौजूदगी का एहसास फूलों की खुशबू में, हवाओं की सरसराहट में और चांद की नरमी में भी होता है। तो लीजिए इन्हीं भावों से सराबोर ये गाना सुनते हैं, जिसे सुनना चाहा है बोगी तेड़ा बैतूल से सरिता कावड़कर, अक्षत, आयुष और काशु कावड़कर ने।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: चलिए अब चलते हैं रसोई की तरफ। कहते हैं दोस्तों स्वास्थ्य का रास्ता हमारी रसोई से होकर गुजरता है। सुबह की शुरुआत अगर पौष्टिक आहार से हो तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा व्यंजन जो स्वाद में लाजवाब और सेहत में बेमिसाल है, पौष्टिक वेजिटेबल पराठा और दही डिप। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे और थोड़े से बेसन में कद्दूकस गाजर, बारीक कटा पत्ता गोभी, बारीक कटी शिमला मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, चुटकी भर हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और एक छोटा चम्मच तेल मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। 10 मिनट बाद छोटी छोटी लोइयां बनाकर पराठा बेलें और गर्म तवे पर तेल लगाते हुए सुनहरा कुरकुरा होने तक इन्हें सेकें। अब साथ में ताजे दही में भुना जीरा, थोड़ी पिसी काली मिर्च, काला नमक, थोड़ा सा बारीक कटा पुदीना और हरा धनिया मिलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लें। तो लीजिए तैयार है पौष्टिक वेजिटेबल पराठा दही के साथ। तो सखियों अपनी रसोई में एक बार इसे जरूर बनाइएगा। मेरा यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी इसे बार बार बनाने की आपसे जिद करेंगे। अब क्यों ना एक बार फिर चलें सुरों की दुनिया में। जिंदगी कई उतार चढ़ाव से बढ़नी है बहनों, कभी खुशी है तो कभी गम है। फिर भी दिल कभी कभी सभी चिंताओं को दरकिनार कर खुलकर सुरों पर थिरकने को करता है ना। ये गीत उन्हीं पलों का साथी है, मस्ती संगीत और शानदार प्रस्तुति का अद्भुत संगम। तो लीजिए सुनते हैं हर पीढ़ी को पसंद आने वाला ये शानदार गीत, जिसे सुनना चाहा है रिंकू परमार, सीमा परमार, ऋषभ और अथर्व परमार ने सीहोर से।

श्रोताओं, हमारा अगला महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन शनिवार को प्रातः 10:30 पर रेडियो सखी प्रीति जी के साथ, जो लेकर आएंगी कुछ दिलकश नगमे, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें एक नए मेहमान के साथ, तो सुनिएगा जरूर। दोस्तों, खत पैगाम लाने के साथ साथ अपनों की धड़कन भी साथ लेकर आता है। एक चिट्ठी जाने कितने मन के भावों को खोलती है। इसमें माँ की ममता होती है, पिता का स्नेह होता है और घर की मिट्टी की मीठी मीठी सी महक भी होती है। हमारा अगला गीत इन्हीं अनकहे जज्बातों की खूबसूरत सी अभिव्यक्ति है, तो लीजिए सुनते हैं इन्हीं भावों की गठरी खोलता ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनना चाहा है नर्मदापुरम से यशी कोशले, शैली कोशले, यामिनी और रवि कोशले जी ने।

श्रोताओ, समय की रेत पर आज की ये मुलाकात अपनी मधुर छाप छोड़ती हुई बस यहीं ठहरती है। हमें उम्मीद है आपको ये छोटा सा सुरीला सफर पसंद आया होगा। अगली मुलाकात शीघ्र होगी, इसी वादे के साथ दीजिए अनुमति। चैताली गौर को नमस्कार।

श्रोताओं, समय की रेत पर आज की ये मुलाकात अपनी मधुर छाप छोड़ती हुई बस यहीं ठहरती है। हमें उम्मीद है आपको ये छोटा सा सुरीला सफर पसंद आया होगा। अगली मुलाकात शीघ्र होगी, इसी वादे के साथ दीजिए अनुमति। चैताली गौर को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से बस कुछ ही पलों में।
1: तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है और अगर हम टाइम पे ना

रंग तिरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सी.वाई. चिंतामणि।

0: गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती
2: आकाशवाणी समाचार के साथ, मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: At 5.25%.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

जमाना हम पे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

रामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ते थे कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलांचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदे जैसे प्रेम की माला पिरोती, प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहाँ बादलों के पंखों पर बैठ कर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आग छलक पड़ती, बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत, हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनकी सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसा लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाए कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज।

तो भी ये गाना आपने सुना, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई है, पहली बार आई है और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थी, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चू पड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी है, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चलता नीले नंबर अंबर, चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा

जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सबने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्ची में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ। हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी। ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नजारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियां, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो क्या था, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म दो दूनी चार, बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं तो वहां एक खाने पीने की चीजें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहां तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।

किनारा। दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनू उड़ती फिरू ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें, लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

फेनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ है, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार। गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटकेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए।

क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल, रामलाल का संगीत था। हमें संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा

पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदे बरसने लगी, की गाना और नील गगन की छाव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने

सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए। पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

कारे में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं दिल कहे, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण कमले।

आओ सब भारतवासी आओ सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग बंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
0: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
2: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
2: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे।

0: बाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे।

विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में भी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक

0: योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा,
1: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ और भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका नंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की।

0: बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ

0: शंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलार ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूल मुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल

0: और लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर भोपाल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत

0: प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, ये रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, हिसार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: मनकापुर सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र की।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे को से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हुई जी, कर
0: अच्छा,
1: 10वीं पास।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में कम निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत पे धूप निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उसको थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा
1: तो रात को आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: आप बताइए कौन बोल रही है और कौन से
1: जी।
0: शहर से।
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा रेखा जी बोल रही है उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं।
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा तो
1: जी।
0: आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: जी ने।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना।
1: जी जी मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी
1: नहीं
0: वाली।
1: नहीं नहीं
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं।
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही अच्छा
1: बिल्कुल
0: आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है। घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं।
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
1: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो
1: वो तो
0: आपके
1: संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे, मैंने
0: बिल्कुल
1: तो बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: तो सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले ऋषि संगीत सविता, भूले ऋषि गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन और किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। ये संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है ना
1: और
0: आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा और सबसे और बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए गमलों में सबने। सबसे
0: अरे वाह।
1: ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, और मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है, तो
0: जी
1: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियां, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जादू टाइप पान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ।
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे, डांस
0: बिल्कुल
1: और म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको
1: हाँ।
0: सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ,
1: रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जो
0: बिल्कुल।
1: है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
0: बहुत बढ़िया।
1: सी
0: तब तो आप पोती के
1: जी
0: साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी
0: तो बताइए
1: जी
0: जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते
0: अच्छा
1: हैं
0: अच्छा आपने लगा
1: और
0: रखे हैं?
1: उसी, हाँ, लगा रखे हुए। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से वो
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी जी
0: और
1: जी चिड़ियों की
0: साथ
1: चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो
1: जी।
0: वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: हाँ, खुश होती
0: तो
1: हैं, सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बात
0: वो
1: अलग
0: चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना? तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोत है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा
1: जी
0: लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाफर सिलमिले का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं उड़ीसा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की। हाँ
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये। आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है, तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ। और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है,
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के
1: हाँ
0: सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा
0: तो ये
1: लगता
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो
1: है।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
1: गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई है शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती है तो मैं ही कह दिया करूँगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो

में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था। बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई। और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता। सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा। क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था। कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी? अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है? भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा। आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ। और मैं पहुंच गई, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसे क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती है और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती है तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये,

तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा।

सब कुछ। मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतनी सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार।

छोड़ती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी

कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए, इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेटकर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: हिम्मतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है, शायद यही तो प्यार है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ। अपने सारे गिले, अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रखती है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें, जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

अपनी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। न दिन अपने लगते हैं, न रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी।

नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ करते हैं हम आज के कार्यक्रम का आगाज। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं आपके रेडियो सफर का साथी साहिल खान, और आप सुन रहे हैं युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हमारी आज की बात का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, विश्व पर्यावरण दिवस। आगे क्रम इनसे मिलिए में आप सुनेंगे राष्ट्रीय स्तर कबड्डी खिलाड़ी सुश्री शिवानी उइके जी को। इसी के साथ क्रम विज्ञान जगत में आप जानेंगे सैटेलाइट तकनीक से बदलती दुनिया, साथ ही होंगे कल के आकर्षण और फिल्मी गीत। दोस्तों, ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर, हमारी आज की बात के विषय की ओर। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागे और चिड़ियों की चहचहाट की जगह सिर्फ मशीनों का शोर सुनाई दे पड़े, पेड़ों की ठंडी छांव की जगह कंक्रीट का तपता जंगल, और

साफ हवा सिर्फ कहानियों में मिलती हो। दोस्तों डरावना है ना, लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी चेतावनी के साथ हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि ये हमारी सांसों में घुली हवा है, हमारी जीवन का पानी है, हमारी धरती, हमारा आसमान, आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। अक्सर कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन सच तो यह है कि युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। आज का युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल सकता है तो समाज की सोच भी बदल ही सकता है। एक युवा अगर एक पेड़ लगाता है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं लगाता बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ऑक्सीजन का एक स्रोत तैयार करता है। एक युवा अगर प्लास्टिक का उपयोग कम करता है तो वो सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलता बल्कि पर्यावरण को राहत देता है। और जब हजारों लाखों युवा मिलकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वही कदम एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेते हैं। युवाओं की भूमिका सिर्फ जागरूक होने तक सीमित नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाने की भी है। कॉलेजों में, स्कूलों में, मोहल्लों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना आज भी सबसे बड़ी जरूरत है। तो याद रखिए, धरती को किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है जिम्मेदार युवाओं की, ऐसे युवाओं की जो पानी बचाए, ऊर्जा बचाए, पेड़ लगाए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखे। दोस्तों हम अक्सर अपने बच्चों के लिए धन, मकान और सुविधाएं जुटाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक स्वच्छ हवा, साफ नदी और हरा भरा भविष्य दे पाएंगे? यह सवाल आप सभी से पूछता हूं। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए, कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक छोटा सा संकल्प ले, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों धरती हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बात का विषय। अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: तो दोस्तों, इस गीत के बाद अब रुख करते हैं क्रम इनसे मिलिए की ओर। कुछ कहानियां सिर्फ जीती नहीं जाती, वो सुनाई भी जाती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी कबड्डी के मैदान में कबड्डी की गूंज के साथ विरोधियों को हराया, तो कभी किताबों और संघर्ष के मैदान में खुद को साबित किया। खेल, अनुशासन और सपनों की ऐसी मिसाल जिन पर पूरा मध्य प्रदेश गर्व कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल कबड्डी प्लेयर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और SSC GD जैसे एग्जाम्स में सफलता हासिल करने वाली और हाल ही में राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल जी द्वारा सम्मानित सुश्री शिवानी उइके जी। शिवानी जी, हमारे कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई तो हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आपका कबड्डी का सफर कैसे शुरू हुआ?
1: मुझे खेलना तो बचपन से ही, मुझे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और स्कूल में तो जब मैं 7th 8th में थी तब स्कूल में खेला करती थी, लेकिन कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला। जैसे मैं 9th में आई तो हमारे स्कूल से बाहर हमें खेलने ले जाया गया। तब से मेरा खेलने का इंटरेस्ट बढ़ते गया और मैं स्टेट लेवल तक के स्कूल्स में ही खेल चुकी थी। और जैसे जैसे मैं इधर आगे की पढ़ाई होती गई, वैसे मुझे पता चला कि आगे हम और अच्छे बड़े लेवल तक के खेल सकते हैं, तो स्कूल से ही मेरी खेलने की शुरुआत हो चुकी थी।
0: ओके, जैसे हम जब शुरू करते हैं खेलना, कोई भी स्पोर्ट हो, हम नहीं सोचते कि हम नेशनल ही होगा, बट हाँ एक चाह होती है कि नेशनल इंटरनेशनल जरूर होगा, हमारा आइडियल कोई ना कोई होता है। तो नेशनल तक का सफर कैसा रहा?
1: जब मैं बैतूल आई थी तो मुझे पता चला था कि कॉलेज से भी गेम्स खिलाने बाहर ले जाया जाता है। तो फर्स्ट में जब मैं गेम्स खेलने गई थी स्कूल कॉलेज से, तो हमारे सर हमको लेकर गए थे। तब हमारी टीम को देख के ऐसा लगता था कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सबको हरा के ही जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हम लोग स्ट्रांग होने के बाद भी सभी टीम से हार गए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी उस टाइम। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए और ऐसा मन में आ गया था कि हमको नहीं खेलना है। तब हमारे भैया है कोच, जिन्होंने हमें

0: कबड्डी सिखाया है सुंदर धुर्वे, तो उन्होंने कहा अगर तुमको आगे खेलना है तुम्हें मेहनत करनी होगी, अगर तुम कंटिन्यू मेहनत करते हो तुम आगे नेशनल इंटरनेशनल आराम से खेल सकते हो और अच्छा गेम दिखा सकते हो। तो हमने ऐसी जैसे हमें सर ने मार्गदर्शन दिया हमारे कोच ने, हमने वैसे ही किया। डेली दोनों सुबह शाम दोनों टाइम हमने ग्राउंड की प्रैक्टिस की और साथ ही अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा जैसे हमें कोच ने बताया, वैसे हमने प्रॉपर डाइट और अनुशासन के साथ मेहनत की है। तो नेशनल भी हमारे लिए इजी लगने लग गया।
1: क्या बात है। अभी आपने जिक्र किया आपको प्रैक्टिस ना करने की वजह से हार का सामना करना पड़ा सभी टीमों से,
0: जी
1: चाहे पढ़ाई हो या खेल हो, प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
0: बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी कहा कि जब हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, और जैसे हमने कंटिन्यू मेहनत की तो हमने सभी टीमों को हराकर नेशनल लेवल तक की अपनी जगह बनाई। वैसे ही पढ़ाई भी है, अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। तो मुझे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था जब मैं खेल रही थी, तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था पढ़ना, लेकिन बस मैंने यही सोचा जब मैं खेल को अनुशासन के साथ कर सकती हूँ, जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था और मैं नेशनल लेवल तक के गई खेलने तो मैंने कुछ सीखा, उसी को मैं पढ़ाई से रिलेटेड करके मैं पढ़ाई भी उसी अनुशासन के साथ करूँ तो मैं ज़रूर सफलता पा सकूँगी एक दिन। तो बस मैंने वही कंटिन्यू मेहनत की और तो एग्जाम मेरा क्लियर हो गया।
1: क्या बात है, बहुत बेहतरीन सोच।
0: जी
1: आप अभी पढ़ाई की बात किए हैं और मेरा उसी से एक सवाल है कि खेल और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा और इनकी तैयारी दोनों का साथ में आपने कैसे मैनेज किया, कितना मुश्किल था?
0: जी स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं खेल के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं करती गई। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ने बैठती तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती थी, मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाती थी। तो बट मैंने पढ़ाई करना छोड़ी नहीं, मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की तो धीरे धीरे मुझे आदत हो गई पढ़ने की। और मैं जब पढ़ाई करती थी तब मैं स्पोर्ट्स मतलब टूर्नामेंट्स खेलने बहुत कम जाती थी। अगर हम टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो जो पढ़ाई जो कंटिन्यू चल रही है वो टूट जाती है बीच में, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मैं ग्राउंड में सुबह से हम डेली जाती थी लेकिन टूर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा कम खेलती थी, इस वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाई और अच्छे से पढ़ने की वजह से मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। अगर मैं अनुशासन के साथ पढ़ाई नहीं करती तो शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता।
1: तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हो या फिर खेल हो, आपको किसी ना किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है,
0: जी
1: तभी कुछ बेहतर हो पाता है।
0: जी हाँ
1: दोनों चीज एक साथ
0: नहीं, दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाती है। अगर हम सोचेंगे कि हमें खेलना भी है और पढ़ाई भी करना है तो हम दोनों पे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में खेल में बहुत अच्छा, मेरा खेल बहुत अच्छा हो गया था तो मैंने सोचा, और सबका एक सपना होता है कि अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: खेल में कोई भविष्य नहीं है आगे, अगर हम है भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अभी हमारे पास अगर टाइम नहीं है हमारे सपनों को अगर पूरा करना है तो पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। तो बस मैंने यही सोचा कि खेलने में तो मैं अच्छी हूँ लेकिन मुझे अपने सपनों को भी पूरा करना है, और जो मेरे मम्मी पापा ने जो सोच के मुझे यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए उनके सपनों को भी साकार करना है। तो बस मेरे मन में यही आया कि मुझे पढ़ाई भी करना है, तो बस मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की, खेल को थोड़ा कम कर दी जिस वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाई।
1: बहुत खूब। मैम अभी आपने जिक्र किया पढ़ाई के साथ साथ खेल या खेल के साथ साथ पढ़ाई, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं आपने कहा, तो जैसे मुझे यहाँ तक यहाँ पे नज़र आया ऑप्शन बी, खेल के साथ साथ अगर आपकी खेल प्रायोरिटी है तो उसके साथ साथ आपका ऑप्शन बी, आपकी पढ़ाई है और कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर होना भी ज़रूरी है, तो ऑप्शन बी आपके लिए कितना महत्व रखता है जिस तरह से आप उस ओर गए? या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे लिए एक ही चीज़ है तो एक ही है, मैं यही करूँगा, या फिर खुद को एक बैकअप में रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन बी होना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये?
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहले से था कि मुझे खेलना है लेकिन मुझे

0: एक मेरा सपना था कि मैं मुझे वर्दी चाहिए, खेलना तो है ही मुझे लेकिन साथ में मुझे वर्दी चाहिए। और फिर मुझे जानकारी मिलेगी तुम खेल खेल के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो। और जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मुझे पता चला कि तुम जॉब के साथ साथ तुम स्पोर्ट कोटा से तुम खेल भी सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा सपना भी पूरा हो रहा है, वर्दी भी मिल रही है और मुझे खेलने का भी मौका मिल रहा है।
1: आपको एक रास्ता और एक उम्मीद नजर आई कि यहाँ से भी खेल खेला जा सकता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: क्या बात है मैम, जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, तो उस तैयारी के दौरान आपकी क्या रणनीति होती थी, क्या दिनचर्या होती थी आपकी?
0: स्टार्टिंग में तो मैं कोचिंग गई थी बट टूर्नामेंट के वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर मैंने हमारे कोच है सुंदर ध्रुवे, उनसे बात की कि भैया मुझसे कोचिंग कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो उनसे सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो फिर मैंने मोबाइल से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में जब वैकेंसियाँ निकलती है तो मैंने जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली है तो मैंने एमपी पुलिस की कोर्स खरीदी, लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया सारे एग्जाम्स का एक कोई कोर्स होगा तो मैं वो खरीदती हूँ और सारे एग्जाम की तैयारी कर लूंगी। तो फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब में फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। मैंने बस वो कोर्स ज्वाइन की और 4 महीने मैंने कंटिन्यू मेहनत की, कोर्स कंप्लीट की। तो मुझे पता चला जैसे मैंने टेस्ट लगाया कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ी उम्मीद आ गई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बस अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उस सिलेबस वगैरह। सिलेबस अगर कंप्लीट हो गई है तो फिर प्रैक्टिस करना है और कुछ।
1: क्या बात है, आपने आपकी बातों में अभी जिक्र किया आपके गुरुजी, आपके मेंटर सुंदर ध्रुवे जी का
0: जी।
1: तो सर का और आपके परिवार का कितना योगदान आप मानते हैं आपकी सफलता में?
0: बहुत ज्यादा योगदान है उनका, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो मैं शायद आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाती। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हर चीज में मुझे। जब भी मैं डीमोटिवेट हुई हूँ तो मोटिवेशन मुझे मेरे मम्मी पापा से ही मिला है, क्योंकि हमारे लिए उतनी मेहनत करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ कर पाए। और हमारे कोच सुंदर ध्रुवे, उनका सही मार्गदर्शन हमें इस काबिल बनाया कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। और मेहनत हो या खेल से जुड़ी कोई बातें हो या फिर पढ़ाई से जुड़ी बातें, सब में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, सही राह दिखाए है।
1: क्या बात है मैम, खेल से मिला आपको अनुशासन जो कि आपकी बातों में बार बार झलक रहा है, और फिटनेस, ये आपकी पढ़ाई परीक्षा में कितनी कारगर साबित हुई?
0: बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि मुझे फिटनेस एग्जाम भी होता है और मेडिकल फिजिकल भी होता है। तो ऐसे ही एमपी पुलिस और एसएससीजीडी में फिजिकल भी था, तो मुझे अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि मैं गेम्स से जुड़ी हूँ तो मेरे फिटनेस वैसे ही फिट हूँ। मुझे अलग से कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पाई।
1: गेम्स के साथ साथ तैयारी चल रही थी।
0: गेम्स के साथ साथ मेरी तैयारी हमेशा थी कि भैया हमेशा बोलते थे कि तुम अगर तुम्हें कभी भी कोई भी फिजिकल देने का मौका है तुमको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये बात सच भी हुई। जब मेरा मेडिकल था फिजिकल था तो 1 मंथ का ही टाइम मिला था हमको, तो अलग से कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। बस गेम्स के साथ साथ ग्राउंड रखी और मैं फिजिकल दी तो बहुत अच्छा गया फिजिकल मेरा।
1: क्या बात है, जैसे आज के युवा जो चीजों में जल्दी निराश हो जाते हैं या कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा
0: जी।
1: और वो थोड़ी और मेहनत कर ले तो कुछ बेहतर अचीव कर सकते हैं, उन्हें फोकस बनाए रखने के लिए आप क्या तरीका बताना चाहेंगे?
0: बस अगर कोई मेहनत करता है, वो थोड़ी सी मेहनत करता है और निराश हो जाता है अगर उसे कुछ फल नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जाम जब स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम दी थी एमपी पुलिस का, जब मैंने मेहनत नहीं की थी, जब मेरे 50 के नीचे ही मार्क्स आए थे, तो मैं कोई निराश हो जाता है उस चीज को देख के कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं जब निराश नहीं हुई, मुझे लगा कि मैं जब बिना मेहनत के मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरे और अच्छे मार्क्स आएंगे और शायद मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बस वही सोचकर मैंने आगे मेहनत की। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, अगर हम मेहनत करते हैं अगर फल नहीं मिलता तो

0: उससे भी कोई सीख मिलती है हमको, तो वो सीख लेनी चाहिए और जो गलतियां करते हैं उसे दोहराना नहीं चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ लिखा रहता है हमारे लिए, तो बस यही है कि कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए।
1: इस सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल और जो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा गुम है, तो मैं आपने खुद को कैसे फोकस्ड रखा? और आपकी एक राय ये भी चाहूँगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सही है और कितना
0: आजकल तो सोशल मीडिया का ही जमाना है,
1: जी।
0: लेकिन एक तरह से हम देखें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है। अगर हम नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव पे जाएंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर पढ़ाई मैंने मोबाइल से ही की है, तो मेरे
1: जी
0: लिए तो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है मोबाइल। तो हम अगर चाहे तो हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक में मैं खुद एक्टिव हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कम टाइम देती हूँ अपने पढ़ाई और गेम्स में, मैं ज्यादा टाइम देती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन हमारी जानकारी हमें कुछ अगर अच्छा मिल

0: से भी कोई सीख मिलती है हमको, तो वो सीख लेनी चाहिए और जो गलतियां करते हैं उसे दोहराना नहीं चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ लिखा रहता है हमारे लिए, तो बस यही है कि कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए।
1: इस सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल और जो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा गुम है, तो मैं आपने खुद को कैसे फोकस्ड रखा? और आपकी एक राय ये भी चाहूँगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सही है और कितना
0: आजकल तो सोशल मीडिया का ही जमाना है,
1: जी?
0: लेकिन एक तरह से हम देखें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है। अगर हम नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव पे जाएंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर पढ़ाई मैंने मोबाइल से ही की है, तो मेरे
1: जी
0: लिए तो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है मोबाइल। तो हम अगर चाहे तो हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं फेसबुक में मैं खुद एक्टिव हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कम टाइम देती हूँ अपने पढ़ाई और गेम्स में, जो मैं ज्यादा टाइम देती हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन हमारी जानकारी हमें कुछ अगर अच्छा मिल

0: मेहनत करना चाहिए। अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करना कर रहा है तो हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं मिला, बस खुद पे विश्वास था कि मैं ये कर सकती हूँ और मम्मी पापा का सपोर्ट था, तो बस यही मैंने खुद से ही सोचा कि नहीं मुझे ये करना है।
1: अंत में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, इनके लिए सफलता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करो। कि सफलता तुम्हें मिलती है या नहीं मिलती है तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है, तो इसलिए सफलता के लिए तुम्हें जी जान से मेहनत करनी चाहिए और अनुशासन के साथ करना चाहिए। अगर तुम एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे तो शायद ही तुम्हें सफलता मिले, अगर तुम कंटिन्यू करते हो मेहनत तो जरूर सफलता मिलेगी।
1: कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवानी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी बातें बताई वो हमारे युवा श्रोता और जो आने वाले खेल प्रेमी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो लोग इस बात को गेन करेंगे, अपना माइंडसेट बनाएंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हम आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी कामनाएं करते हैं।
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद। पूरे आकाशवाणी की ओर से और कार्यक्रम युवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण बातचीत के बाद आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: the game.
1: दोस्तों उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। दोस्तों इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी एफएम वेव 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी, और साथ ही हम आपको बताएंगे हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम गौधूली में सोनू निगम के गाए हुए भक्ति गीत। शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और शाम 6:50 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम सबरस, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे गजल, भजन, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। श्रोताओं, शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज हम ग्राम सभा कार्यक्रम लेके आएंगे, जिसमें आज की बात का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस और उस पर करेंगे चर्चा। सामूहिक कृषि चर्चा में खेत में मेंढ बांधकर फसल सुरक्षित रखें, इस पर आपको जानकारी देंगे, और श्रृंखला बातें खेती किसानी की, और जानिए मौसम व बाजार भाव। रात्रि 8 हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके मीत। 8:30 पर हमारे स्टूडियो से सुनिए कार्यक्रम साज और आवाज। इस कार्यक्रम में हम आपको किसी एक गीत की धुन सुनवाते हैं और साथ ही उसी धुन पर आधारित वो गीत भी आप तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, रात्रि 9 से रात्रि 10 तक विविध भारती मुंबई से हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। रात्रि 10:30 पर हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गायन पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर। रात्रि 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण, आकाशवाणी

गीत की धुन सुनवाते हैं और साथ ही उसी धुन पर आधारित वो गीत भी आप तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, रात्रि 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक वेद भारती मुंबई से हम अनुप्रसारित करेंगे वेद भारती सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। रात्रि 10:30 पर हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गायन पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। और रात्रि 11:45 पर हमारे आज के कार्यक्रम की समापन की उद्घोषणा होगी। तो ये थी हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हमारी कल की सभा आरंभ होगी सुबह 5:55 पर और सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम भक्ति धारा में हम आपको सुनाएंगे पंडित जसराज, अनूप जलोटा, राजन साजन मिश्र और वीणा सहस्त्रबुद्धि के स्वर में भक्ति गीत। कल सुबह 6:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम चिंतन और 6:35 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान स्वर होगा अनूप जलोटा और सुरेश वाटकर का। कल सुबह 6:45 पर कार्यक्रम लोक रजनी में सुनिए निशा ठक्कर और साथियों से उनके गाए हुए लोकगीत। श्रोताओं, कल सुबह 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोके से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ पुराने भूले बिसरे गीत। कल सुबह 7:50 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम सुबह सवेरे में कुछ जनउपयोगी जानकारी और सूचनाएं। श्रोताओं, कल सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो FM बैतूल। 9 से 10 बजे तक वेद भारती मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे वेद भारती सेवा के कार्यक्रम। कल सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कल सुबह 10:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम महिला जगत में, जिसमें आज की बात का विषय है घर आंगन में स्वच्छता एवं जल संरक्षण तथा सुरक्षित खाद्य आते, मुलाकात में सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य स्वच्छता और इस विषय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गृह विज्ञान विशेषज्ञ से आपकी बातचीत हम आपको सुनाएंगे। बागवानी पर सुझाव में वर्षा ऋतु पूर्व घर की बगिया की तैयारी के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। कल शाम 5:30 पर युवाओं का अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम सुनिए, जिसमें आज की बात का विषय होगा आय के एक से अधिक विकल्प तलाशें। अवसर में जानिए प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में नए कोर्सेज और जानकारी दे सकते हैं हम आप तक छात्रवृत्ति के बारे में। रोजगार स्तंभ में जानिए कृषि के क्षेत्र में करियर के अवसर विषय पर कृषि क्षेत्र में कृपकों को ऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत फील्ड ऑफिसर हरीश धाकड़ से बातचीत। और स्तंभ में जानिए सेहत मंत्र में शरीर को सक्रिय रखने के फायदे, साथ ही हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, कल शाम 6:05 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए निर्मला गोहिया और उनके साथियों के गाए हुए लोकगीत। कल शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 6:50 पर कार्यक्रम सवरस, जिसमें आप सुनेंगे गजल भजन कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा गांव में शहरों की ओर पलायन के कारण और उनका निवारण। सामूहिक कृषि चर्चा में जानिए ज्वार एक उपयोगी फसल, श्रृंखला बातें खेती किसानी की, साथ ही सुनेंगे लोकगीत और जानेंगे मौसम व बाजार भाव। कल रात्रि 8 बजे हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें नई गीत नए। रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे युगल गीत। श्रोताओं, कल रात्रि 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक वेद भारती मुंबई से मन प्रसारित करेंगे वेद भारती सेवा के कार्यक्रम। और रात्रि 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन और 10:30 पर सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में भूपेन हजारिका के गाए हुए गीत। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार, 11:05

मिनट पर अंग्रेजी में समाचार और कल रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम और रात्रि 11:45 पर हमारी कल के प्रसारण सभा की समापन की उद्घोषणा होगी। तो ये आपने जाना कार्यक्रम विवरण के बारे में। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गौधूली और आइए सुनते हैं सोनू निगम से ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गौधुली और हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए हुए भक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गौधुली, और हम आपको सुना रहे हैं सोनू निगम की आवाज में उनके गाए हुए भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौधुली और हम आपको सुनवा रहे थे सोनू निगम के गाए हुए भक्ति गीत एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सिलसिला का ये गाना, संगीत शिवहरी का।

श्रोताओं, आइए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आपको अगला गीत सुनवाएं, उससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141-234722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234-722 और 231-944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। तो कार्यक्रम सुनना ना भूलें और कॉल करना ना भूलें। अब श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। ये गीत है मुकेश की आवाज में, फिल्म है कभी कभी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये भजन।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, जिसमें हम आपको सुनाते हैं गजल, भजन, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। अभी तक हमने कार्यक्रम में आपको भजन और गजल सुनवाई, अब आइए सुनवाते हैं ये कव्वाली।

0: आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में ये गीत।
1: सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57

0: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
2: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
1: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशभा ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉ यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को एमएसपी से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
3: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो दो लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
1: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2,000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पवंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतर पीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडोरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम वेव 103.1 MHz पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी। तो आइए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे सभी किसान भाइयों और सभी श्रोताओं को छोटे लाल धुर्वे का राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस और आज के दिन पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए श्रोताओं, आज हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। और आज का हमारा आज की बात का विषय भी विश्व पर्यावरण दिवस ही है। तो आइए बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा करने, बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सबसे बड़ा वैश्विक कार्यक्रम है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में जो है आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन में इस दिवस की नींव रखी गई थी। इसके बाद पहली बार 5 जून 1973 को यह दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 150 से अधिक देश इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं। भाइयों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए और विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो इसमें भाइयों लोगों में जागरूकता बढ़ाना है पहली प्राथमिकता। यह जो है इसे लोगों को यह समझाना कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इस बारे में जो है लोगों को हमें जागरूक करना होता है। दूसरी यदि हम बात करें तो ठोस कदम भी इसके लिए हमें उठाना होता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और नागरिकों को प्रेरित करना। इसमें एक और बात भाइयों, हरियाली को बढ़ावा देना। इस दिन दुनिया भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने के अभियान चलाए जाते हैं। भाइयों, इसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, आइए इस बारे में हम और बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपने स्तर पर कई छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जिसमें पौधे लगाना, अपने जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर पेड़ जरूर लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग जो है कम करें, जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियां के बजाय कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें, और पानी बचाएं, आवश्यकता ना होने पर नल को बंद रखें और वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। ऊर्जा की बचत भी हम जो है साथ ही साथ करते चलें। घर से निकलते समय लाइट और पंखे बंद कर दें और सौर ऊर्जा का उपयोग जो है बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर। और अब

किसान भाइयों, अभी आप भजन सिंह ने और साथियों के स्वर में सुन रहे थे ये आदिवासी गोंडी लोकगीत। और अब किसान भाइयों, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का

0: प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141, ये बैतूल का एसटीडी कोड, और फोन नंबर 23472 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने, 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य, फोन नंबर 234-722 या 231-944, बैतूल का एसटीडी कोड है 071-41। सूचना समाप्त हुई। और अब किसान भाइयों, समय है अब आज के हमारे मेहमान से आपको मिलवाने का, तो आइए मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से आपको। और आज के हमारे मेहमान है ग्राम छुरी के कृषक श्री विनोद हनोते, तो आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। किसान भाइयों, आज हम आए हैं ग्राम छुरी और यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके अपने कृषि कार्यों के अनुभव। तो भैया, सबसे पहले हम आपका हमारे इस कार्यक्रम किसान वाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय राम जी की।
1: जय राम जी की सर।
0: भैया, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: मैं विनोद हनोते, ग्राम छुरी में निवास करता हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम किसानवाड़ी में विनोद भैया। और हम आपके खेत में ही बैठे हुए हैं, तो इस समय खरीफ सीजन लगभग नजदीक है और आई गई है खरीफ सीजन, तो आप इस समय अपनी खेती बाड़ी को लेकर क्या तैयारियों में लगे हुए हैं? खेतों की तैयारी से लेकर बीजों की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, और इस समय आप कौन से काम में लगे हुए हैं खेती बाड़ी को लेकर?
1: सर, अभी खेती में हमारा काम गेहूं के जो कटाई के बाद हमने शुरुआती मई के महीने में हमने प्लाव करवा लिया था, और प्लाव आज मान के चलो कि 1.25 महीना होने जा रहा है और बिल्कुल तैयार प्लाव करवा के एकदम रेडी रखे हैं। और कुछ समय बाद अभी थोड़ा सा पानी, दो एक पानी हुआ है गिरने के लिए ऊपर वाला, थोड़ा और गिर जाए इसके बाद उसमें कल्टीवेटर लगवाएंगे, थोड़ी बखरवा देंगे उसको, तो थोड़ा और अच्छे से कचरा वचरा उसका जो उगे अब हरियाली वो थोड़ा सा साफ हो जाए।
0: तो मई के महीने में आपने प्लाव करवा दिए हैं मतलब खेत में?
1: हाँ, मई के महीने में मैंने पूरा।
0: और हम खेत में ही आपके खेत में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि पूरा जो आपका खेत है प्लाव होकर कंप्लीट है। तो आगामी जो खरीफ सीजन है उसके लिए आप ता है तो फिर बोने की तैयारी में लगे रहेंगे होंगे?
1: हाँ सर, ये अब जमीन तो हमने प्लाव करवा करके पूरा कम्प्लीट रखा है और कल्टीवेटर लगवा कर, और बुआई के लिए पूरी तैयारी में हमने खाद ला लिया है, यूरिया DAP जैसा जो भी लगता है
0: जी।
1: और बीज भी ला चुके हैं हम, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, एवरेज में भी है थोड़ा
0: जी। तो मतलब पूरा जो है मक्के की ही खेती करने वाले हैं आप, मक्के की बुआई करेंगे?
1: हाँ, इस बार 4.5 से 5 एकड़ समथिंग में पूरा मक्का ही लगाना है।
0: अच्छा।
1: और बाकी में गन्ना है 1 से 1.5 एकड़ में, जो बढ़िया 5 से 7 फीट का हो चुका है अभी आज की कंडीशन में।
0: गन्ना की फसल भी बढ़िया है मतलब?
1: हाँ, गन्ने की फसल भी एकदम आपको तो दिख ही रही है, खेत में अपन बैठे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और गन्ना की फसल में मैंने अभी पानी 4 से 5 पानी चला दिया था समय समय पर, और उसमें खाद अभी इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा चली जाती है, ऐसा मेरा अनुभव के हिसाब से। अभी नींदा नाशक डाला हूँ और आपको दिख ही रहा है एकदम हरा भरा एकदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके बाद मक्का बोना स्टार्ट कर देंगे।
0: अच्छा भैया, अभी जो जायद का सीजन चला गया है, मूंग और उड़द हमारे किसान भाई इनकी फसलें लेते हैं, तो क्या इस साल आपने भी मूंग और उड़द की फसल ली है?
1: मैंने लगभग आधा एकड़ समथिंग में मूंग लगाया था, 3 किलो मूंग बोया था मैंने, बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका आया।
0: कटाई वगैरह दावन हो गई?
1: उसको तुड़वा करके उसको बढ़िया कूट करके उसको अपन ने बीज निकाल लिए।
0: अच्छा, फलियां उसकी तुड़वाई होगी और फिर कूट लिए?
1: हाँ, विधिवत उसको बढ़िया तुड़वाए और उसको बढ़िया कूट काट के अभी को रख लिया है।
0: अच्छा अच्छा, मूंग को?
1: मूंग को
0: जी जी। तो 3 किलो का कितना हुआ वैसे भैया?
1: अभी तो अंदाजे से रखे हैं, ऐसा कोई नाप तोल नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा टाइम मिल जाए उसके बाद उसको देखते हैं कितना क्या है।
0: तो मूंग के अलावा उड़द भी बोए थे होंगे?
1: मूंग के अलावा उड़द नहीं बो पाए क्योंकि बोना तो था
0: जी जी,
1: लेकिन पानी और सब चीजों को देखते हुए जो चीज अपने को उपयोग रहती है
0: जी जी,
1: वही चीजें बोते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो मूंग की फसल अपने लगाई थी
0: जी जी। आपने पानी की बात की विनोद भैया, तो आपके खेत में जो है पानी का क्या साधन है वैसे, कुआ है या ट्यूबवेल है?
1: अपने खेत में कुआ है और कुएं में बढ़िया पर्याप्त पानी है, गेहूं की सीजन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, बढ़िया चल जाता है।
0: सीजन में जो है बढ़िया चल जाता है पानी आपके कुएं का?
1: हाँ, कुएं में बढ़िया पानी चल जाता है, 2 की मोटर चलती मेरी 7 एकड़ में
0: जी जी,
1: पर्याप्त पानी पूरा देती वो मोटर भी।
0: पूरे 7 एकड़ में जो है पानी पूर जाता है?
1: हाँ, 7 एकड़ में पूरा पानी पूर जाता है, बाकी तो कहीं कहीं पानी की कमी आ जाती है लोग बाग बताते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने तो हर साल अब देख ही रहा हूँ, गहरा भी नहीं है ज्यादा, कम गहरा है लेकिन तो भी वो बराबर पानी पूर जाता है।
0: गहराई भी ज्यादा नहीं है और चौड़ाई भी ज्यादा?
1: हाँ, ज्यादा चौड़ाई भी नहीं गहराई भी नहीं है, लेकिन पानी अपने को पर्याप्त 7 एकड़ में पूर जाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती।
0: और गर्मी के समय में आप जो गन्ना पालते हैं उसमें भी पानी पूरी जाता है?
1: हाँ, पर्याप्त पूर गया मेरे को, मैंने 4 से 5 पानी चलाया, मैंने बहता वाला पानी चलाया तो भी बराबर पूरा चल गया।
0: और मूंग भी अपन ने पाल लिए?
1: मूंग भी पाल लिया मैंने, उसी के साइड में आधा एकड़ में मैंने मूंग लगाया था, वो भी बराबर 1 नंबर हो गई वो भी।
0: तो अब जो है बरसात के सीजन की तैयारी में आप लगे हुए हैं, और जैसे ही एक अच्छी बारिश होती है तो आप जो है फिर मक्के की फसल बोने वाले हैं मतलब?
1: हाँ सर, अब आपको तो दिख ही रहा है मेरी जमीन किस प्रकार से मैंने तैयार किया हूँ, एकदम प्लो करवा करके
0: जी।
1: और उसमें बस कल्टीवेटर मारना बाकी रह गया है।
0: हाँ।
1: कल्टीवेटर मार करके और जैसा एक पानी थोड़ा सा गिरता है तो उसमें बोनी स्टार्ट कर देंगे।
0: तो आप मक्के की बोनी जो है किस पद्धति से करते हैं वैसे, किस पद्धति से करने वाले हो विनोद भैया? जैसे सार निकाल के किसान भाई एक एक बीज का दाना भी डालते हैं, या फिर सीड ड्रिल द्वारा बोते हैं, या बैलों द्वारा बोते हैं, तो आप किस विधि से मक्के की फसल को जो है बोने वाले हैं?
1: मैंने तैयारी और ऐसा मेरा प्लान चल रहा है कि 2 एकड़ समथिंग में मेरे को सार निकलवा के उसमें मक्का जो एक एक लगा करके वो विधि से लगाऊंगा, क्योंकि ज्यादा जगह में तो अपन इतना कवर नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो 3 एकड़ जो मेरा रहेगा प्लॉट उसमें सीडिल के द्वारा बोऊंगा, जो खाद और मक्के का जो कम्बाइंड रहता है जो सीडिल उससे बोने का विचार है। पिछली बार भी बोया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका, सीडिल का भी कोई परेशानी नहीं आती बोने में।
0: तो सीडिल से बोने से भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है वैसे?
1: हाँ, मैंने पिछली बार भी बोया था और उससे पहले भी 2-1 साल से मैं उसी से बोते आ रहा हूँ, तो सीडिल का भी बोया 1 नंबर उगता है, कहीं से कहीं तक के कोई फॉल्ट नहीं होता,
0: कोई
1: नुकसान नहीं है, तो इसलिए सीडिल से ही बोऊंगा मैं। 2 एकड़ में जो मेरा है प्लान, जो एक एक मक्का करके उसको लगाऊंगा मैं, तो उतना तो मैं कवर कर ही लूंगा, लीवर भी हो जाएगा या फिर घर से भी कर लेंगे
0: जी।
1: बाकी जो 3 एकड़ रहेगा उसको तो सीडिल से बोना पड़ेगा, इतना कवर करना मुश्किल रहता, पानी एकदम से गिर जाए या कुछ हो, फिर समय का अभाव रहता और मौसम के हिसाब से भी देखते हुए चलना पड़ेगा, तो 2 एकड़ में तो कवर कर लेंगे लेकिन बाकी पूरा को नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाकी सीडिल से बोएंगे।
0: यदि पूरे जमीन को अपन एक एक दाना लगाते हैं तो उसमें समय लगता है, और लंबा बतर मिला नहीं मिला इसके भी वो रहती है मतलब?
1: हाँ, तो वो जो रहेगा 2 एकड़ तो वो 2 से 4 दिन में लग जाएगा
0: जी।
1: और उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा बताए हैं इस चक्कर से उसको थोड़ा लगाने का विचार चला,
0: जी
1: और इसी बार प्लान भी बनाया मैंने और उसको

0: तैयार तो है ही, उसमें सिर्फ सार खिंचवाना है
1: जी,
0: और उसमें फिर एक एक दाना करके जो लगाते हैं वो लगाएंगे जी, दूरी के हिसाब से
1: जी। अच्छा भैया, आपके पास ट्रैक्टर वगैरह तो निजी साधन?
0: नहीं, ट्रैक्टर तो नहीं है सर, एक जो शिवराम यू ने करके हैं
1: जी जी,
0: वो हमारे अच्छे मित्र हैं और उन मान के चलो कि वो ट्रैक्टर उनके पास है हमारे पास है, ये समझ करके वो ट्रैक्टर जब भी बुलाओ तब बराबर आ जाता है और
1: अच्छा,
0: वो खेती
1: अच्छा।
0: कर देते।
1: मतलब आपके मित्र के पास जो ट्रैक्टर है उससे अपन...
0: मित्र है हमारे, तो वो उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, मान के चलो कि उनके पास है मतलब अपने पास है
1: जी, जी, जी।
0: वो घर के ही ट्रैक्टर है समझ लो, तो वो खुद ही कर देते हैं वो।
1: अच्छा,
0: बहुत बढ़िया आदमी है वो
1: जी जी,
0: अपने को ट्रैक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी
1: जी, जी।
0: जब उनके पास है तो अपना भी 7 एकड़ वही कर देते हैं
1: जी जी,
0: जरूरत ही नहीं ज्यादा ट्रैक्टर में भी, फिर ड्रावल ढूंढो ये करो, तो वो परेशानी से हट करके अपन ने उन्हीं को चुना है तो हर साल उन्हीं से बुआई जुताई पूरा जो भी काम है उन्हीं से करवाते हैं, इस प्रकार से काम चलता है।
1: अच्छा भैया, सोयाबीन वगैरह आजकल टोटल बोना बंद कर दिए होंगे?
0: सोयाबीन थोड़ा बहुत बोएंगे, ज्यादा तो नहीं बो पाएंगे, पर थोड़ा बहुत बोना पड़ेगा। एक किसी भी प्रकार की फसल को ना बो करके उसका अपमान भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो या ना हो लेकिन थोड़ा तो बोना ही पड़ेगा, 15 से 20 किलो।
1: और मक्के के अलावा दलहनी फसलों में तुअर वगैरह दाल वाली फसलें भी कुछ बोते होंगे आप? बोएंगे
0: दाल वाली फसलें बोते हैं, एक
1: जी जी।
0: एक
1: क्या
0: से
1: क्या
0: डेढ़
1: जैसे?
0: एक से डेढ़ किलो समथिंग तुअर लगा देता हूँ मैं हर साल, अच्छा रिजल्ट आता, वो भी अच्छी किस्म की लगा दो
1: जी जी।
0: कई प्रकार की आती है, बहुत प्रकार की हाइब्रिड वेराइटी, तो उसमें से कोई भी अपने को जो पसंद आए वो उसको चुन करके उसको लगा देते हैं।
1: और इसके अलावा बरबटी वगैरह ये भी लगाते होंगे?
0: हाँ, थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ता है, किसान आदमी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुटमुट बल्लर सब्जी वाली चीजें ये तो डालना ही पड़ता है
1: जी,
0: इसके बिगैर तो किसान का कोई काम ही नहीं चल सकता।
1: भाई अब घर पे जैसे प्रतिदिन हमें सब्जियां लगती है, तो उस हिसाब से अपन खेती कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो सब्जी वाजी उगाना ही पड़ता है, तो वो तो लगाना ही है।
0: हाँ, वो क्या है कि जमीन है अपने पास तो जमीन का उपयोग तो होना ही चाहिए, और लोग बाग तो प्लांटेशन ऊपर लेंटर में करके और सब्जी उगा लेते हैं, तो अपने पास तो इतना शहरों में तो अपने पास तो ये 7 एकड़ है, तो अपन नहीं लगाएंगे तो एक शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए करना पड़ता है, इस पर सभी चीजें लगानी पड़ता है।
1: इस बार अधिक रकबे में आपका जो है मक्के की ही फसल रहेगी?
0: हाँ, मक्के की फसल रहेगी, और जो भी थोड़ी बहुत चुटमुट चीजें हैं बरबटी उड़द वगैरह ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी लगाई देते हैं, धान वगैरह भी।
1: धान भी लगाते हैं आप?
0: हाँ, खाने योग
1: जी, जी, जो रोपा वाली या फिर वो जो देसी होती है तासवा द्वारा?
0: नहीं नहीं, रोपे वाली लगाते हैं अपन, तासवे वाली की डगर नहीं जाता, क्या है थोड़ा सा एवरेज कम आता है और रोपे वाली का एवरेज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए रोपे वाले में ज्यादा।
1: तो इस समय रोपा लगभग किसान भाई डाल देते हैं, तो आपने भी डाल दिए होंगे?
0: नहीं, अभी जरा 2-4 दिन में डालते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं डाल पाया, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, उसको भी डालने की विधि विधान से डालो तो सब तैयार हो जाता है, 15 से 20 दिन या 1 महीने के समथिंग में तैयार हो जाता है रोपा, तो इतना घबरा के डालने से भी कोई मतलब नहीं, बाद में पीला पड़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, समय पर नहीं लगा पाए, इसलिए अभी 2-4 दिन में डालने का विचार चल रहा है।
1: इस बार कितने किलो धान का रोपा डालने वाले हैं आप?
0: मैं इस बार 1 से 1.5 किलो ही लगा पाऊंगा, क्योंकि बाकी मेरा मक्के के ही ज्यादा प्लान रहता है।
1: अच्छा।
0: बाकी चीजें तो ये चुटमुट अपना खाने उपयोग घर उपयोग के लिए ही लगाते हैं, पर मक्के का मेरा बहुत अच्छा काम है।
1: धान जो है अपन सिर्फ घर पे खाने लायक के हिसाब से लगाते हैं?
0: हाँ, घर में अपने खाने लायक हो जाए उतना ही लगाते हैं, बाकी जो मक्के का है वो उसका मेरा अच्छा काम है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है।
1: धान के लिए खंतियां वगैरह तो पहले से ही बनी हुई होगी आपके खेत में?
0: हाँ, वो बंदियां अपनी पहले से ही तैयार है, उसको थोड़ा सा प्लाव वगैरह करवा लिए हैं तो और तैयार हो गई है, और थोड़ा सुधार करवा लेंगे उसमें
1: जी,
0: लेवर लगवा।
1: अच्छा भैया, धान लगाने के लिए वैसे और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, खासकर रोपा वाली धान लगाने के लिए, और किस प्रकार लगाते हैं धान, इसकी विधि के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे?
0: मैं तो जब से लगा रहा हूँ मैं देखता हूँ कि रोपा जैसा तैयार हुआ अपन ने उखाड़े, इसके बाद उसका एक बीज उपचार का पाउडर आता है वो लाओ, और बढ़िया बीज उपचार करके अगर लगाते हैं अपन, तो उसको 15 से 20 से 25 दिन समझ लो कि उसकी जो जड़ें विकास करना है वो विकास बहुत गति से कर, और किसी प्रकार का फफूंद वगैरह ये इस प्रकार का कुछ नहीं लगेगा, और नहीं लग अपन ने उनका बीज उपचार किया तो थोड़ी परेशानी तो आएगी, तो इसलिए विधि विधान से ही लगाना बहुत आवश्यक है, मैं बीज उपचार करके ही लगाता हूँ।
1: भैया वैसे रोपा को किस अवस्था में किस समय उपचार किया जाता है? वैसे जैसे रोपा

0: बढ़िया तैयार हो जाता है, उसके बाद उपचार किए करते हो आप, किस प्रकार करते हैं?
1: अपन ने रोपा डाल दिया, इसके बाद रोपा उग गया अपना, अब
0: जी
1: 20 से 25 दिन हो गया तो वो आराम से 8 इंच से 9 इंच आ जाए, जो थोड़ा सा और हाइट आ जाए 10 इंच तक लगाने योग्य। इसके बाद उसको बढ़िया उखाड़ो एक एक पौधा
0: उखाड़ने के
1: करके,
0: बाद बीज उपचार करते
1: फिर
0: हैं।
1: इसके बाद उसको धुलना पड़ता है पानी से, और फिर उसको बढ़िया तरीके से बीज उपचार के पानी में डुबो करके लगा दो।
0: अच्छा, जो पाउडर होता है उसको घोल लो, और उस घुले हुए पाउडर में अपने जो पौधे हैं धान के, उनको जो है डुबा डुबा कर बीज
1: हाँ,
0: उपचार करना होता है।
1: उनको बढ़िया अपन ने उखाड़ लिया, धुल लिया, और फिर उसकी थोड़ी सी मुट्ठी टाइप की बनाना पड़ता है, मुट्ठी
0: जी
1: टाइप की बना ली अपन ने, और उसको बढ़िया पानी जो अपना बीज उपचार के लिए रखे हैं उसमें बढ़िया डुबो करके उसको एक एक पौधा लगा दो। उसका जो पौधे के कल्ले जो निकलेंगे वो 20 से 25 कल्ले से ऊपर ही निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे।
0: जी जी
1: ये बीज उपचार का रिजल्ट ऐसा देखने में आता है।
0: जी जी जी तो आप धान का रोपा लगाने के पहले आपकी जो खेत में उसके जो खंतियां बनी रहती है उसको किस प्रकार बनाते हैं, और फिर लगाना होता है धान की रोपे को?
1: उसको बढ़िया जुतवा करके
0: जी
1: उसमें जो कचरा अगर थोड़ा अगर उग जाए, धान की बंदियों में कचरा उग ही जाता, उसको बढ़िया उखड़वा करके, और उसमें हो सके तो रोटावेटर हम तो मार देते हैं, क्योंकि कोई मारे ना मारे हम बढ़िया तरीके से उसको रोटावेटर मार करके भुरभुरा बना करके वो एक एक अगर कचरा भी है तो उसको बीन लेते हैं, और इसके बाद ही उसमें
0: जी
1: पानी भर के,
0: अच्छा, पानी भरना पड़ता है।
1: हाँ, फिर उसमें ट्रैक्टर चलवा देते हैं ताकि वो जो मच जाए
0: जी
1: जमीन,
0: जी
1: फिर लगा देते हैं उस
0: जी
1: लेवर के द्वारा।
0: जी
1: लेवर लगाती है हमारे यहाँ, तो हम क्या उतना कर नहीं पाते, परिवार के कम सदस्य हैं, तो बाकी हम भी करते हैं, लेकिन लेवर लगाने के लिए बढ़िया अपन करवा लेते हैं
0: और
1: उसको।
0: फिर जैसे पानी तो उसमें भरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बरसात का समय रहता है तो पानी तो बरसात में भर ही रहता है
1: हाँ,
0: खेतों में।
1: ऑलरेडी पानी गिरते रहता है, तभी लगाना भी पड़ता है उसको,
0: जी,
1: तो बंदियों में पानी वैसे ही भर जाता है तो भरने की जरूरत भी नहीं है।
0: मान लो बीच में लंबा यदि बतर आ गया, पानी नहीं गिर रहा है, तो फिर भरना पड़ता है।
1: हाँ, फिर मोटर चलाना पड़ता है,
0: जी,
1: मोटर तो डली सी रहती है अपनी, तो चालू कर दो पानी, अगर पानी बीच में बंद हो गया तो उसको बढ़िया बंदी में पानी भर दो, क्योंकि 10 से 15 दिन अगर पानी अगर भर के रहेगा तो उसमें जल्दी ग्रोथ करता पेड़ होता, क्योंकि सूखी जगह रहेगी तो पेड़ एक सिंगल ही रह जाएगा, तो उसको पौधा को जमने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो पानी भर के ही रखना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा धान का काम चलता है।
0: तो आप खेती बाड़ी बढ़िया तरीके से करते हैं विनोद भैया, और खेती के साथ साथ आप पशुपालन भी करते होंगे?
1: हाँ, अभी इसी बार लाया है एक बच्चिया,
0: जी जी जी
1: बाकी 3 4 5 साल से तो नहीं थी,
0: जी जी
1: इसी बार से शुरुआत किया है,
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि पशुपालन क्या हुआ था कि घर से ही चोरी हो गए थे, हाँ,
0: अच्छा
1: मन उचट गया था अपन, अब इस बार से शुरुआत किया है
0: जी जी
1: रखने के लिए, तो चालू किया है रखना इस बार
0: जी
1: से।
0: जी अच्छा विनोद भैया, पशुपालन जो है खेती के साथ साथ पूरक व्यवसाय के रूप में माना जाता है, तो इस बारे में आप क्या मानते हैं, कितना किसानों के लिए पशुपालन करना जो है कितना सहायक होता है, ये आप क्या मानते हैं इस बारे में?
1: बहुत जरूरी है, किसान अगर है तो पशु तो रखना ही चाहिए।
0: जी
1: पशु ऐसा है कि गौ अगर अपने पास है तो उसकी दुआ भी मिलती है, क्योंकि खेत में जो अपना जो कचरा होता है घास फूस वो अगर उग जाए तो उसको बढ़िया अपन ने लाए उनको खिलाए, अपने घर पे भी अनाज जो होता है थोड़ा उनको खिलाए तो उसकी दुआ भी लगती है, और इसके बाद वो एक ये भी है कि वो दूध भी देते हैं और उसका गौमूत्र भी होता है, और फिर जो खाद होती है
0: गोबर खाद,
1: गोबर खाद वो अपने खेत के लिए बहुत बेटर खाद होती है, कि फायदे तो इतने हैं कि बताना ही बहुत आगे तक के है, वो तो बहुत लंबी सर्विस देती है वो
0: इसलिए
1: खाद।
0: किसान भाइयों को जो है पशुपालन भी करना ही चाहिए।
1: हाँ, पशुपालन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा 3 4 साल से तो नहीं रखा था, पर इस बार से शुरुआत किया हूँ और अब रखूंगा मैं।
0: जी जी पहले भी आप पालते ही थे लेकिन?
1: हाँ, पहले मेरे पास 4 5 गाय थी, बढ़िया दूध दूध भी होता था, बैल थे, लेकिन वो चोरी होने के कारण थोड़ा सा मन उछड़ गया था, अब वो किस व्यक्ति ने ले गया क्या है वो तो कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अब बढ़िया मैंने व्यवस्थित उनके लिए बनाया हूँ और उसमें रखूंगा अब।
0: तो इस प्रकार से आपका जो है खेती बाड़ी का काम बढ़िया चलता है, और इस तरह से आप खेती का काम करते हैं?
1: हाँ सर, इस
0: जी
1: प्रकार
0: जी
1: से मेरा, और दिख ही रहा आपको तो
0: जी
1: खेत में
0: जी
1: ही अपन बैठे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और खेत में ही निवास भी आपका, और यहीं से आप
1: हाँ,
0: खेती के काम भी बढ़िया करते हैं।
1: मैं आज 25 साल समथिंग हो गया।
0: तो विनोद भैया, आपने आपके कृषि कार्यों का अनुभव हमारे साथ साझा किए और इतनी अच्छी जानकारी दी कृषि संबंधित, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।
1: जय राम जी की सर।
0: किसान भाइयों, अभी आप ग्राम छुरी के कृषक श्री विनोद।

से की गई बातचीत सुन रहे थे। और अब किसान भाइयों आइए, आज हम बात करते हैं कृषि चर्चा हमारी जो है उस बारे में। और हमारे आज का जो कृषि चर्चा है, खेत में मेड़ बंधान कर फसल सुरक्षित करें। किसान भाइयों, आज का हमारा कृषि चर्चा का विषय तो हमने जो है आपको बता ही दिया है कि खेत में मेड़ बंधान कर फसल सुरक्षित करें। जी हाँ किसान भाइयों, अपने खेतों में मेड़ बंधान का कार्य अवश्य करवाएं, जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी का कटाव नहीं होगा और खेत का पानी खेत में ही रहेगा। खासकर भाइयों, अपने ढालूनुमा ढलान वाली यदि जमीन है तो हम इसमें जो है आप जरूर मेड़ बंधान करवाएं, जिससे कि हमारे खेत से मिट्टी बहकर नहीं जा पाएगी और मिट्टी का कटाव भी रुक पाएगा इससे। साथ ही साथ जो खाद उर्वरक हम अपने खेतों में देते हैं वह भी बहकर जो है नहीं जा पाएंगे, और मेड़ों के रहने से खाद भी जो है मेड़ के माध्यम से हमारे खेत में ही रुके रहेंगे, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़िया होगा तो हमें उपज भी अच्छा मिलेगा। और भाइयों, दूसरा सबसे प्रमुख लाभ हमें जो है ये होगा कि हमारे खेतों में मेड़ों के रहने से बरसात का पानी भी जो है खेत में ही कुछ मात्रा में तो रुकेगा, जिससे पानी रोकने का जो हमारा कार्य भी है ये बढ़िया हो पाएगा। इसलिए भाइयों, अपने खेतों में मेड़ बंधान का कार्य अवश्य कराएं और बढ़िया जो है इससे लाभ पाएं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी ही चर्चा, खेत में मेड़ बंधान कर फसल सुरक्षित करें इस विषय में। और अब किसान भाइयों, कार्यक्रम संबंधी सूचना आइए हम आपको एक बार और बता दें। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 071-41-234-722 या 231-944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234-722 या 231-944। बैतूल का एसटीडी कोड है 071-41। सूचना समाप्त हुई। और अब किसान भाइयों, यहाँ पर समय है एक और लोकगीत सुनने का। तो आइए सुखदेव गुजरे और साथियों के स्वर में सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान भाइयों, अभी आप सुखदेव गुजरे और साथियों के स्वर में सुन रहे थे ये लोकगीत। और अब किसान भाइयों, समय हो गया है आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति छोटे लाल धुर्वे को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी।

गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी आकाश श्रीवास्तव। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए वे नगमे जिनके लिए आपने हमें भेजे अपने व्हाट्सएप संदेश और आपने सुनना चाहा है अपने पसंद का गीत। तो चलिए आपके इसी संदेश को हम पहुंचाते हैं गीत के रूप में आपके ही रेडियो सेट पर। तो सबसे पहली फरमाइश लेते हैं, ये फरमाइश आई है व्हाट्सएप पर। फरमाइश करने हमारे वाले श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। आपने सुनना चाहा है हेमलता और शैलेन सिंह की आवाज में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत, और इसी गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है गांधी वार्ड बैतूल बाजार जिला बैतूल से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मोहित, नरेश, रेखा, मयूरी, जीतेन, शिवांश, हर्ष, कनक, मुन्ना, नामदेव एवं उनके बहुत सारे साथीगण। आप सभी ने हमें फरमाइश लिखकर भेजी है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाजार के इस गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 47 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयबीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए, आप सभी के की फरमाइश पे हम आप ही के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत फिल्म बाजार से।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। तो चलिए अगली फरमाइश लेते हैं हम, और ये फरमाइश है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया एवं समस्त चंसोलिया परिवार। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है रेशमा की आवाज में फिल्म हीरो के इस गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाहे बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजनी करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय एवं उनके बहुत सारे साथीगण। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आप ही के रेडियो सेट के आसपास फिल्म हीरो का ये गाना।

कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों यदि आप भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने आज तक अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है और आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश इस कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में भेज सकते हैं। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से जिस नंबर पर हमें संदेश भेजेंगे कृपया वो नंबर लिख लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। आप इसमें अपनी फरमाइश की गीत सुनने के लिए अपना संदेश भेजें, साथ ही आपका आपके परिवार के और आपके उन साथियों का नाम भी लिखकर भेजें जिन्हें ये फरमाइश पसंद है और वो हमारे इस कार्यक्रम में अपनी इस फरमाइश को सुनना चाहते हैं। तो आप इस पते पर इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें फरमाइश। हमें इंतजार रहेगा आपकी फरमाइश का, आपके गीतों का। और चलिए अगली फरमाइश लेते हैं। ये फरमाइश है फिल्म रफू चक्कर के इस गीत के लिए जिसे सुनना चाहे गोनपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीत कवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत एवं समस्त शेखावत परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डेकेस्ट्रो एवं समस्त डेकेस्ट्रो परिवार। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं फिल्म रफू चक्कर का ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये फरमाइश आई है आर्यनगर कोहका भिलाई से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेले, मूरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष नंदिनी, धामदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि एवं समस्त जंघेल परिवार। तो लीजिए, आप सभी ने हमें जो फरमाइश भेजी है फिल्म स्वामी के इस गीत के लिए, तो हम सुनवा रहे हैं आप ही के आसपास लता मंगेशकर की आवाज में आपकी फरमाइश का गीत फिल्म स्वामी से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं यूथ आउटरीच इनिशिएटिव आकाशवाणी एट द रेट ऑफ 90 के अंतर्गत श्री बालाजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान बैतूल में आयोजित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।
1: प्रस्तुत है श्री बालाजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान बैतूल और आकाशवाणी बैतूल द्वारा तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी एट द रेट 90 युवा आउटरीच इनिशिएटिव के अंतर्गत 5 जून 2026 को श्री बालाजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान बैतूल में आकाशवाणी बैतूल के तत्वाधान में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री सचिन भागवत, कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रवीण चौरे, वरिष्ठ उद्घोषक श्री योगेश्वर देश पांडे तथा संस्था के प्राचार्य श्री परेश जे शाह एवं बी के पांडे उपस्थित रहे। माँ शारदे के छायाचित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात आकाशवाणी की टीम का पौधों के गमले भेंट करके स्वागत किया गया। स्वागत वक्तव्य देते हुए संस्था के प्राचार्य श्री परेश जे शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: आज के जो प्रमुख अतिथि हमारे हैं सचिन जी भागवत, प्रवीण जी चौरे, योगेश्वर जी देशपांडे और उनकी पूर्ण टीम, उनको अभिनंदन करता हूँ कि आज जो 90 साल आकाशवाणी की जो 90 साल कंप्लीट हुए, इस आकाशवाणी के 90 साल के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और थैंक यू इसलिए कहता हूँ कि आपने हमारा कॉलेज इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए चुना है और इस कंपटीशन में जो एक्सटेम्पोर कंपटीशन जिसको कहते हैं, जिसमें हमारे बच्चे सहभागी होने वाले हैं और इससे हमारे बच्चों के करियर पे या पर्सनालिटी पे जरूर फर्क पड़ेगा और एक्टिवली ये लोग हमारे बच्चे यहाँ पे पार्ट लेंगे।
1: वरिष्ठ उद्घोषक श्री योगेश्वर देश पांडे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आकाशवाणी समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित एवं उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। सखी सहेली जैसे कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं युववाणी जैसे मंच युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं।
3: आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, और जैसा कि इस कार्यक्रम का आज ऐसा दिन चुना गया है जो विश्व पर्यावरण दिवस भी है, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ शाहजी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। साथ में पांडे जी भी मौजूद हैं जिन्होंने भी हमारा उत्साहवर्धन किया है, और बाकी जो स्टाफ है उन्होंने भी हमें यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया। आज आप लोगों के सामने हमारी आकाशवाणी की टीम उपस्थित है, और वैसे तो रेडियो एक ऐसा संचार का साधन है जो काफ़ी प्राचीन है और ये वर्ष 1936 से लगातार चलता आ रहा है और आज वर्ष 2026 आ गया है। इस प्रकार से इसके आने वाले 8 जून को पूरे 90 वर्ष हो जाएंगे, और इन 90 वर्षों की यात्रा में यदि रेडियो को देखें तो आज़ादी के पहले का जो इतिहास है उसमें भी रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका थी, आज़ादी के बाद भी थी और आज के युग में भी है। आकाशवाणी बैतूल को आप आसानी से सुन सकते हैं यदि आप उसको 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून करते हैं। इसको ट्यून करने के बाद आपको पूरे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे और आप इनका आनंद उठा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होना है, जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि इस कार्यक्रम में जो हमारे साथी हैं वो आपको और भी अलग अलग प्रकार की बातें बताएंगे, और इस छोटी सी जानकारी के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं क्योंकि कार्यक्रम को अभी आगे और विस्तार देंगे। धन्यवाद।
1: इस अवसर पर श्री सचिन भागवत ने कहा कि आकाशवाणी पिछले 90 वर्षों से

0: देश के जन जन तक सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम रहा है। मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का संदेश सीधे आमजन तक पहुंचता है, जो जनसंवाद को सशक्त बनाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आकाशवाणी की ओर से आपके महाविद्यालय के शाह साहब के और आपकी पूरी टीम के कि आप लोगों ने हमें ये समय दिया और आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का मौका दिया। इनफैक्ट अभी मैं बहुत बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा बस ये अनुरोध है कि आकाशवाणी आप लोगों के लिए सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम प्रसारित करता है वो आप ज़रूर सुने। निःशुल्क है ये सारे कार्यक्रम और उसका लाभ लें। बहुत पुराना इतिहास है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री प्रवीण चौरे ने कहा कि इस तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपने विचार निर्भीकता के साथ व्यक्त कर सके। आकाशवाणी निरंतर ऐसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
2: कार्यक्रम युववाणी उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यूथ आउटरीच इनिशिएटिव के तहत आकाशवाणी का प्रसारण जैसे सर ने बताया सन 1936 से प्रारंभ होकर निरंतर जारी है। तो सन 1969 में ये आवश्यकता महसूस की गई कि युवाओं के लिए एक अलग से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जिसमें कार्यक्रम का संचालन भी युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाए, मुद्दे भी युवाओं के हो और कार्यक्रम का प्रसारण प्रस्तुतिकरण भी युवाओं के माध्यम से किया जाए। तो 23 जुलाई सन 1969 को युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तब से ये अनवरत जारी है। युवाओं की आकांक्षा को समझना, उनकी मांग को समझना, उनके मुद्दों को समझना और उसके हिसाब से कार्यक्रम तैयार करके उनके इंटरेस्ट की बात रखना और रेडियो से उनको जोड़ना, ये आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है।
0: प्रतियोगिता में कुल 17 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न समसामयिक एवं सामाजिक विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति कौशल एवं विषय की गहराई ने उपस्थित सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण, ऊर्जावान एवं प्रेरणादायक रहा। तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता बुजुर्गों का सम्मान करें विषय पर कुमारी आर्या गुप्ता ने अपने विचार इस तरह रखे।
3: मेरा नाम आर्या गुप्ता है, मैं बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है बुजुर्गों का सम्मान। जैसे ही ये विषय मेरे मन में आता है तो मेरा हृदय इसके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचता है, क्योंकि ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है माता देवो भव और पिता देवो भव। इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि माता पिता तथा बुजुर्ग देवता के समान माने गए हैं।
0: उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, विषय पर बोलते हुए है खुशी बोड़खे।
4: हमें अन्न की कीमत जानना होगा, क्योंकि ये चीजें नहीं रही तो ये हमारे जीवन को अफेक्ट नहीं करेगी। इससे हमारे ये नहीं होगा कि हम जी ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अन्न नहीं रहा तो एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, इससे ज्यादा क्या हम अन्न के बिना जी पाएंगे। लेकिन अगर मोबाइल फोन्स नहीं रहे, कॉस्मेटिक्स नहीं रहे तो हम जी सकते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ ही नहीं आता है। जितना खाना भारत में व्यर्थ जाता है उतने खाने में यूके की जनसंख्या एक साल तक खाना खा सकती है, पर ये बात कौन समझेगा। भारत को अन्न की भूमि, हम अन्न की भूमि कहते हैं क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। भारत में हम खेती कर सकते हैं और भारत से हम अन्न दूसरे देशों में पहुँचाते हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि भारत के लोग होने के बावजूद हम अन्न की और खेती की मर्यादा नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। हमारी संस्कृति हमें अन्नपूर्णा को पूजा जाता है, देवी पार्वती को अन्नपूर्णा कहते हैं कि क्योंकि वो हमारी अन्न की पूर्ति करती है। हमारे घर पे जो महिलाएं, हमारी माताएं होती है, वो हमारे घर की अन्नपूर्णा होती है। हम हमारी मम्मी को अन्नपूर्णा कहते हैं क्योंकि वो हमारे घर की अन्नपूर्णा अन्न की पूर्ति करती है। उसी प्रकार हमारे देश के अन्नपूर्णा हमारे किसान होते हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं, पर ये बहुत शर्मदायक बात है कि उन्हें ही खाना नहीं मिलता कई बार। तो मेरी बस इतनी ही आप

0: से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाना अली में। धन्यवाद।
1: वृक्षारोपण का महत्व विषय पर छात्र भावेश पाल ने अपने विचार इस तरह रखे।
2: हमारे जीवन की सच्चाई है, पेड़ के बिना हमारा जीवन कल्पना नहीं कर सकते। पेड़, क्योंकि पेड़ से हमें फल मिलता है, फूल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, हमें मेडिसिन मिलती है। पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। पर्यावरण का अर्थ ये होता है जल, थल, नभ, आकाश का आवरण, उसमें बीच में फैला हुआ आवरण।
1: ग्राहक जागरूकता विषय पर छात्रा प्रिंसी ठाकुर की प्रस्तुति इस तरह रही।
3: हमने अक्सर सुना है कि ग्राहक भगवान होता है, कस्टमर इज गॉड। पर जनाब, ये तो कलयुग है, क्योंकि मंदिरों के बाहर से आजकल जहाँ चप्पलें चोरी हो जाती है, तो ग्राहक को लूटना कोई बड़ी बात तो है नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम, सिमिलरली अवेयरनेस बिगिंस एट होम टू। अगर हम अपने आप में जागरूकता नहीं ला सकते, तो हम कैसे इस समाज को, इस देश को और इस सोसाइटी को आगे लेकर जाएंगे।
1: रिया परिहार ने अपने शौक के लिए भी समय निकाले, विषय पर अपने विचार रखे।
4: अपने शौक के लिए समय निकालना, आज की इस दौड़ भरी जिंदगी में हम एक मशीन बन के रह चुके हैं, जिसमें हम अपने शौक के लिए समय कभी नहीं निकाल पाते, या अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, या कहीं बहुत पीछे छोड़ा है उस चीज को। तो अपने शौक के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाने में मदद करता है। जब भी हम अपना मनपसंद काम करते हैं, जैसे किसी को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, या किसी को गाना गाने का शौक है, या पेंटिंग करने का शौक है, या डांस करने का, इत्यादि बहुत से शौक है, तो हमें इस चीज को पूरा अपने जीवन में पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपना मनपसंद काम करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है, जिससे हमारे जीवन में तनाव दूर रहता है, और हम ये भी अपने जीवन में सप्ताह में कुछ दिन ऐसे निकाल सकते हैं कि जब हम अपना शौक पूरा कर सके। रोज की बात तो नहीं है, रोज हम बहुत व्यस्त रहते हैं, पर सप्ताह में कुछ घंटे या कुछ दिन ऐसे निकाल सकते हैं जब हमारे शौक को पूरा जरूर कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत खुशहाल रहेगा और हमारा तनाव भी दूर रहेगा। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रतियोगिता में बीटेक अंतिम वर्ष की छात्रा आर्या गुप्ता ने प्रथम स्थान हासिल किया, द्वितीय स्थान खुशी बोड़खे ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान पर रहे भावेश पाल। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आर्या गुप्ता को युववाणी कार्यक्रम में 6 जून को आकाशवाणी के रेडियो मंच पर एक दिन के लिए प्रस्तुति देकर आरजे बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर वीके पांडे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपने भविष्य को संवारने, व्यक्तित्व विकास करने तथा आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
5: एंड डेफिनेटली अवर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड बाय योर गाइडेंस एंड दे विल डेफिनेटली फॉलो योर फुटप्रिंट्स एंड मूव अवेड इन देयर ब्राइट फ्यूचर एंड कैरियर। ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर टीम SBITM, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड कन्वे माई बेस्ट विशेस फॉर द 90 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर एक्सेलेंस in the field of broadcasting. Again, such type of cooperation from Akashvani Betul is expected in near future also. Thank you one and all.
1: कार्यक्रम का सफल आयोजन आकाशवाणी बैतूल एवं बालाजी इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर फैकल्टी मेंबर्स और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, और इसी के साथ यूथ आउटरीच इनिशिएटिव Akashvani@90 के अंतर्गत कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। तकनीकी सहयोग गिरीश कमल चौहान और रवि प्रकाश लिल्होरे, वाचक स्वर दिव्यांश पल्हेवार और प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चौरे।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुने यूथ आउटरीच इनिशिएटिव Akashvani@90 के अंतर्गत श्री बालाजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान बैतूल में आयोजित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अमन उपसायत करेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत

0: मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरीज नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

0: किया। कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी है और संगीतकार रवि हैं।

0: और मेरी तन्हाई सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण की बोल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाना सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हजरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा। 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मे बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फिल्म को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

जिसके बाद आई खूबसूरत एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज

प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनुष्का जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीर दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ

अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म मिर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती

तो दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 MHz पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आकाश श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं वे नगमे आपको सुनवाने जा रहा हूं जिनके लिए आपने लिख भेजी हमें अपनी फरमाइश, और आपकी फरमाइश हमें दो तरीके से प्राप्त हुई है, एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से और एक व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपकी इसी फरमाइश को मैं पूरा कर रहा हूं और हमारे स्टूडियो से आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं आपकी के पसंद के गीत। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपकी फरमाइश को आप तक पहुंचाने के लिए हम सबसे पहली फरमाइश जो ले रहे हैं वो फरमाइश है

फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के इस गीत के लिए फरमाइश भेजी हमें ग्राम बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, बेबी आरुषि, ऐशिका, अंजलि, श्वेता एवं समस्त वर्मा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकाया, सविता एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आप ही की पसंद का फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं पीएस नवारकर, निर्मला विशाल सोपान, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महरेकर और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। आप सभी ने वह फरमाइश भेजी है फिल्म नूरी के इस गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाहा है हनुमान चौक वार्ड नंबर 4 कीरपानी जिला बैतूल से संतोष बात्री, शकुन बात्री, नीलू बात्री, अंजलि बात्री, नितिक्षा, कृष्णकांत बात्री, पप्पू बात्री, सुमित बात्री, जय जयदीप बात्री, दीपक बघेल, प्रदीप बघेल, लक्षु यादव, अर्जुन शिवनकर और उनके बहुत सारे साथीगण। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आप ही के आसपास फिल्म नूरी का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमने ली है, ये फरमाइश है गांधीबाग अकोला से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर एवं समस्त कटनकर परिवार। आप सभी ने मैं फरमाइश भेजी है फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के लिए, और इस गीत को सुनना चाह रहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राव भाई, शाहिद भाई एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाह है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज एवं समस्त बजाज परिवार। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म डिस्को डांसर का ये गाना बप्पी लहरी की आवाज में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत हमारे इस कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में सुनना चाहते हैं और आपने आज तक अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है, तो हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप अपनी फरमाइश हमें दो तरीकों से भेज सकते हैं। पहला माध्यम या तरीका है कि आप पोस्ट कार्ड पर अपनी फरमाइश लिखकर और फरमाइश करने वाले श्रोताओं और जिस स्थान से आप अपनी फरमाइश भेज रहे हैं उसका पूरा पता हम तक पहुंचा दें, तो हम आपकी इस फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फरमाइश कैसे भेजेंगे, किस पते पर भेजेंगे, तो कृपया आप हमारा पता लिख दें। कार्यक्रम आपके मीत ये गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 460001। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। तो आप जिस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेंगे, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। एक बार फिर से लिखें 7141234722। तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, हम आपकी इस फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल और कर दीजिए हमें व्हाट्सएप या पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। हमें इंतजार रहेगा आपकी फरमाइश का और हम आपकी फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए अब फरमाइशों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली फरमाइश लेते हैं। ये फरमाइश आई है पुणे से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं प्रियंका आर्या, पंकज बाड़ोदे, बाबा साहेब बाड़ोदे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है कुमार सानू की आवाज में फिल्म परदेश के गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाह है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेर अब्बासी और उनके बहुत सारे साथी घर। जिला मुरादाबाद से ही ग्राम दुल्लापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहनी, ऋतिक, बलवीर और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए आप सब भी की फरमाइश पर आप ही के रेडियो सेट पर फिल्म परदेश का ये गीत।

श्रोताओं, इस फरमाइशी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। तो आकाश श्रीवास्तव को दीजिए विदा अगली मुलाकात के वादे के साथ। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गायन पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर।

0: Nación.
1: Por Nación. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
1: Vishesh Shrinkla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी
2: A warm welcome to our listeners on Akashvani and today we're joined by

0: ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़ करके आ सकें, और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है। इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है। पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेज में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं। तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेज के लिए। जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से।
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोज स्टार्टअप वेंचर्स, दे आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। अलोंग विद दैट, बैंकिंग का क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप एंटरप्राइजेस?
0: देखिए, बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है पर्टिकुलरली फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट। बैंक्स आर जनरली इंसिस्टेंट ऑन कोलैटरल्स व्हेनेवर समबडी सीक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक। So banks normally are cautious that it should not become a non-performing asset tomorrow. The money should not be wasted away. So that is the reason why they exercise due diligence to make sure that they are loaning it to the right party and for a right project. So they usually insist on taking a collateral also. Now these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral, it's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem, for them, it generates confidence because the government is backing it. So this has made a significant and transformational impact, I would say.
1: A business requires human resources. You need skilled labor. You also require top management, middle level management who know what they are doing with skilled labor itself. How do you see Skill India playing a very important role across sectors where the opportunity has now come for labor intensive industries with businesses weaning away from China and now to South Asia?
0: You know, as we have moved from having labor intensive industries like textiles, auto, electronics, towards those sectors which are the new technology sectors, like electric vehicles, for example, robotics, we have use of automation in almost all sectors, health, advanced healthcare. So in these sectors, there is a different kind of skill set that is required from the young generation. And that is where Skill India has been a very important critical enabler. And besides Skill India, there are skill development schemes and programs which are being operated by various other ministries of the government. And government has made a conscious effort to ensure convergence among all these schemes. So in fact, even Ministry of MSME has a very important role to play in developing skills, particularly industry-grade training. And we have technology centers located pan-India, which are running these courses for from 6 weeks to 6 months, sometimes even for a year. And they provide industry-grade training to the young generation. It offers them good opportunities of placement also thereafter.
1: नहीं भी देखा है कि काफी परिवर्तन आया है इन द लॉ व्हेन इट डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज। इफ यू लुक एट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द न्यू इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस फॉर इंस्टेंस, यू हैव रिविजन ऑफ द मिनिमम रेट फॉर इंस्टेंस, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज अप एंड द एंटरप्राइज इज पेइंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉई कंसर्न। सो हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स ऑल्सो मोटिवेटिंग द लेबर to not only upgrade themselves but also to provide value for the services?
0: You know, here again, I feel that this was a much awaited reform which has come in the form of the new labor codes. We had multiplicity of labor laws in India, which were neither serving the purpose of labor welfare, nor were they very favorable for industry to expand and to operate. They were a major bottleneck because it was a huge compliance burden on the industry. Sometimes even led to rent seeking and corruption within the government machinery. So probably this was one sector which was looking for reform for years. So government took an excellent initiative of doing away with some of those